0: कोई कोई मिशन म्यामा
1: कोई कोई मिशन म्या में है
0: बाग में जाते हैं बंदा के जगह है अब दे बंदा दे चेंस्टे मोनो ऐ उधर जो वो मार्ची है मुताबिक जिसमें तो लोग मार्शल जो बावी तीन आने ऐ ने म्या मुआ पकोन जो मार्च में ना ऐ ने लेला आंद्रे मैक स्टेफनी बोना ने जो बावी तो मुझे तो कोनी जगह एक रिसोर्समेंट पर लेस एडो एडोलेसेंट ए वाई तन के सुनो जो बावी मार्को नो चेंज के है मुताबिक मार्को तो ए वाई तन के चेंज में हाथ उठी ना विनो जो बावी मार्को नो Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
1: que vous avez dit que vous avez dit
0: que vous